0: स्टेशन के लिए कौन सा? इधर है उधर है, चर्चगंज स्टेशन के लिए
1: पास लो।
0: कौन सा भी चलेगा?
1: हाँ ये वाला 5 नंबर नीचे नीचे लेफ्ट वाला।